0: मेलोडी मुमिका
1: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी
0: दन नोस्टाल्जिया यंग तपना पुडा
2: अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा तू परेशान है
0: हिंदी हिट setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk kau